ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। बैन अलाक्वामी मालियाती फंड IMF का कहना है कि जापान की मईशत का अगले साल आलमी दर्जा बंदी में भारत और बरतानिया के पीछे छठे नंबर पर आने का इम्कान है। इस हफ्ते जारी किए जाने वाले अपने ताज़ा तरीन माशी मंजरनामे में IMF का तखमीना है कि 2027 में जापान की बराए नाम मजमूई मुल्की पैदावार GDP 4.467 ट्रिलियन डॉलर होगी। IMF के 2026 के तखमीने में जापान अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर है, लेकिन भारत की बराए नाम GDP अगले साल 4.521 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का तखमीना है, जबकि बरतानिया की GDP 4.488 ट्रिलियन डॉलर होने का इम्कान है। तवक्को है कि भारत और बरतानिया दोनों में जापान की निस्बत ज़्यादा नमू होगी। दरियासना येन की मुसलसल कमज़ोरी अमरीकी डॉलर के लिहाज से जापान की GDP की कदर को कम कर देगी। जापान को ज़्यादा सरमायाकारी और बेहतर पैदावारी सलाहियत के जरिए नमू में इजाफे के चैलेंज का सामना है, क्योंकि मुल्क की आबादी में कमी का तसलसल रहने का इम्कान है। यूक्रेन के एक दिफाई एहलकार का कहना है कि अमरीकी खलाई तरक्याती कंपनी SpaceX ने यूक्रेन में अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को जुज़वी तौर पर महदूद कर दिया है, जिससे मुल्क की फौजी कार्रवाइयाँ मुतासर हुई हैं। वजारत दिफा के एहलकार ने बुध के रोज नामानिगारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट पर मबनी इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदियों ने रूसी ड्रोन्स का रास्ता रोकने, हमला करने वाले ड्रोन्स की कार्रवाइयों के साथ साथ अगले मोर्चों को रसद की फराहमी और जासूसी में रुकावटें पैदा की हैं। वजारत दिफा इस मसले को हल करने के सिलसिले में अमरीका, SpaceX और नेटो के रुकन ममालिक के साथ रबते में है। रूसी अफवाज ने मंगल से बुध तक दारुलहुकूमत कीफ और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया कि बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बारे में शराकतदार ममालिक की तरफ से कोई पेश की इत्तला नहीं थी। इस तश्वीश के तनाजुर में कि आया अमरीका यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा, ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज लंदन में बरतानवी वजीर आजम एंडी बर्नम से मुलाकात की। बरतानवी हुकूमत ने यूक्रेन के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का आज़म किया। उसने ये ऐलान भी किया कि वो यूक्रेन को फजाई दिफाई मिसाइलों की फराहमी तेज करेगी और उन्हें जल्द अज जल्द वहां नस्ब करेगी। AI और सेमीकंडक्टर के शोबजात में तश्वीश के माहौल में जुमेरात को टोक्यो में हिस्सेस की कीमतों में बड़ी कमी आई। जापान का कलीदी निक्के 225 इशारिया मुख्तसर वक्त के लिए 3600 पॉइंट्स या 5.3% से ज़्यादा गिर गया। मंडी में कारोबारी दिन का अख्ताम 4.9% या 3318 पॉइंट्स की कमी के साथ 64425 पर हुआ। तजियाकारों का कहना है कि सरमायाकारों ने क्लाउड स्टार्टअप्स में फंडिंग पर बढ़ती हुई तश्वीश की खबरों के बाद हिस्से फरोख्त किए। ये खौफ भी मौजूद था कि अमरीकी AI डेवलपर एंथ्रोपिक की आमदनी मायूस कुन रहेगी। बुध के रोज जारी करदा अमरीकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तवक्को से ज्यादा रहा, इसके सबब भी हिस्से फरोख्त किए गए। इससे कयास आराइयां हुई कि फेडरल रिजर्व तवक्को से पहले शरह सूद में इजाफा करेगा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 15 अक्टूबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान के कृषि मंत्री याना खाजुओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सड़क बजट आवंटन के संबंध में उनकी टिप्पणियों और चुनाव कानून के संभावित उल्लंघन को लेकर हालिया दिनों में उन पर सवाल उठ रहे थे। याना ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री ताकायची सानाए से मुलाकात की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि संसद के काम में और अधिक व्यवधान से बचने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देने के इरादे के बारे में बताया। याना सितंबर में ताकायची मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उससे पहले मई में अपने गृह प्रिफेक्चर तोचिगी में एक सभा में उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी कि उन्होंने उन दो नगर पालिकाओं के सड़क बजट में काफी कटौती की है जिनके महापौरों ने उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं दिया था। याना ने पिछले सप्ताह अपनी टिप्पणियां वापस लेते हुए क्षमा याचना की थी, लेकिन विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि याना ने शायद चुनाव अधिनियम का उल्लंघन किया है। मीडिया में आरोप लगाए गए हैं कि याना ने निचले सदन के पिछले चुनाव अभियान के दौरान अपने समर्थकों के लिए मुफ्त शटल बसों की व्यवस्था भी की थी। विपक्ष ने इसके गैर कानूनी होने की संभावना जताई है। ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार है जब उनके मंत्रिमंडल से किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। बुधवार शाम को पत्रकारों से बात करते हुए ताकाइची ने मौजूदा हालातों पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि याना को नियुक्त करने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसे वे बेहद गंभीरता से लेती हैं। ताकाइची ने बृहस्पतिवार को ताकेबे आराता को कृषि मंत्री के रूप में नामित किया। 56 वर्षीय ताकेबे सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से निचले सदन में सांसद हैं। जापान सरकार ने रूसी अधिकारियों से जापानी पत्रकार के बारे में फौरन जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इससे पहले रूस ने घोषणा की थी कि उसने जासूसी के संदेह में एक जापानी पत्रकार को हिरासत में लिया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सुदूर पूर्वी क्षेत्र सखालिन में होक्काइदो शिम्बुन प्रेस के यूज़नो सखालिंस्क ब्यूरो के एक संवाददाता को हिरासत में लिया है। बुधवार को जापानी विदेश मंत्रालय में यूरोपीय मामला ब्यूरो के महानिदेशक नाकामुरा किमिताके ने जापान में रूसी राजदूत निकोलाई नोजद्रेव को तलब करते हुए पत्रकार के बारे में जानकारी फौरन उपलब्ध कराने, उसके साथ मानवीय व्यवहार करने और उससे मिलने की अनुमति देने का आह्वान किया। नाकामुरा ने संवाददाता को हिरासत में लिए जाने की फुटेज जारी होने पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया और जापान को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना एक तरफा रूप से इसे सार्वजनिक करने के लिए रूस की आलोचना की। जापानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि बुधवार रात तक जापानी वाणिज्य दूतावास को रूस से हिरासत के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी और पत्रकार के स्वास्थ्य सहित अन्य विवरणों के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कहना है कि अगले साल वैश्विक रैंकिंग में जापान की अर्थव्यवस्था भारत और ब्रिटेन से पीछे छठे पायदान पर पहुंच सकती है। इस सप्ताह जारी ताज़ा आर्थिक अनुमान में आईएमएफ ने कहा कि 2027 में जापान का सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद 44.67 खरब डॉलर रहेगा। आईएमएफ ने 2026 में जापान को अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर रखा है, लेकिन भारत की सांकेतिक जीडीपी अगले वर्ष 45.21 खरब डॉलर और ब्रिटेन की जीडीपी 44.88 खरब डॉलर रहने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन दोनों की विकास दर जापान से अधिक रहने की उम्मीद है। लगातार कमजोर होते येन के कारण जापान की जीडीपी का मूल्य डॉलर के संदर्भ में कम हो जाएगा। जनसंख्या में गिरावट जारी रहने की आशंकाओं के बीच जापान को उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता से विकास को बढ़ावा देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उक्रेन के एक रक्षा अधिकारी का कहना है कि अमरीकी अंतरिक्ष विकास कंपनी स्पेसएक्स ने उक्रेन में अपनी स्टारलिंक इंटरनेट सेवा को आंशिक रूप से सीमित कर दिया है, जिससे देश के सैन्य अभियानों में बाधा उत्पन्न हो रही है। रक्षा मंत्रालय के इस अधिकारी ने बुधवार को पत्रकारों से बात की। उसने बताया कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं सीमित किए जाने के कारण रूसी ड्रोन विमानों से बचाव और हमलावर ड्रोनों के संचालन के साथ साथ मोर्चे पर रसद पहुंचाने और निगरानी करने जैसे कार्य बाधित हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अमरीका, स्पेसएक्स और नाटो सदस्य देशों के संपर्क में है। रूसी सेना ने मंगलवार से बुधवार तक राजधानी कीव और अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के संबंध में सहयोगी देशों से कोई अग्रिम सूचना नहीं मिली थी। इस चिंता के बीच कि क्या अमरीका उक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा, जेलेंस्की ने बुधवार को लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम से मुलाकात की। ब्रिटिश सरकार ने उक्रेन को अपना निरंतर समर्थन देने का वादा किया है। ब्रिटेन ने ये भी घोषणा की कि वो उक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति में तेजी लाते हुए उन्हें यथाशीघ्र वहां तैनात करेगा। एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों से जुड़ी चिंताओं के बीच टोक्यो शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। जापान के प्रमुख निक्केई 225 सूचकांक ने 3600 से अधिक अंकों यानी 5.3% का गोता लगाया। दिन के अंत में ये 3318 अंक यानी 4.9% लुढ़क कर 64425 पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार क्लाउड स्टार्टअप्स में फंडिंग संबंधी चिंताओं की खबरों के बाद निवेशकों ने शेयर बेचे। इसके अलावा ये आशंका भी जताई गई कि अमरीकी एआई डेवलपर एंथ्रोपिक की आय के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे। बुधवार को अमरीकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान से अधिक आने के बाद भी बिकवाली देखने को मिली। इससे ये अटकलें लगने लगी कि फेडरल रिजर्व बैंक उम्मीद से पहले ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के कृषि मंत्री याना खाजुओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सड़क बजट आवंटन के संबंध में उनकी टिप्पणियों और चुनाव कानून के संभावित उल्लंघन को लेकर हालिया दिनों में उन पर सवाल उठ रहे थे। याना ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए से मुलाकात की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि संसद के काम में और अधिक व्यवधान से बचने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देने के इरादे के बारे में बताया।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।